भाग ये अवकाश और निगम क्षेत्रों का विविध भारतीय

राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट

0: अवसर पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय

मंत्री एलिना वाइटोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना

तरफ प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इनकी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति

से सभी नागरिकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम

गोयल, स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन मुरलीगर आर्टेगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस्ट दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम

0: सुपुत्री नितिन कवि साझा कर रही है अपनी किताब कवि कभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तो 15 मिनट पर और दिन में 2 बजे आपसे मुझे वंदे मातरम इंक जय घोष। आज 32वीं कड़ी लेखक मिलिंद सबनी प्रस्तुतकर्ता अनुपा है। 8:30 पर चित्रलोक सुनिए।

अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल थे। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाए उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई जिद्दी नहीं देखती। स्वयं भरत जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सपिचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देश आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

जो उनकी अपनी परंपरा रही है। गज जिसे अंग्रेजी में बो कहा जाता है, प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को पटवाद्य के नाम से संबोधित किया है, किंतु बीसवीं शताब्दी के कतिपय लेखकों ने प्रहार से वादन किए जाने वाले वाद्यों को तटवाद्य और गज से बजाए जाने वाले वाद्यों को विकटवाद्य की संज्ञा प्रदान की है। गज वाद्यों को विकट कहना उचित नहीं है, क्योंकि प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथों में अवलब्ध वाद्य को विकट वर्ग के अंतर्गत बताया गया है, इसलिए इसे गज वाद्य कहना या गज तटवाद्य कहना अधिक उचित प्रतीत होता है। जिससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि वे वाद्य जिसमें तार लगे होते हैं और उन्हें गज से घर्षण करके बजाया जाता है। गज वाद्यों की यह विशेषता है कि इन वाद्यों द्वारा एकल वादन अर्थात सोलो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और इन वाद्यों से साफ संगत भी अच्छी तरह की जाती है। इतना ही नहीं, इन वाद्यों का वाद्य वृंद में

श्रोताओं, आज हम सर्वप्रथम वायलिन वादन की चर्चा करेंगे। वर्तमान में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संगीत में वायलिन ने अब अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। वायलिन को उत्तर भारत में डोला नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि रावण हस्त बिना लंका भी पति रावण द्वारा बनाई गई।

कर के देखो सही देंगे। वायलिन का आविष्कार किसने किया यह आज एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ विद्वान गास्पर पिंको प्रगर को वायलिन का आविष्कारक मानते हैं। कुछ चिंतकों का चिंतन है कि वायलिन को रोमाना के आंद्रे अमाती ने बनाया। कुछ गुरुजनों का विचार है कि वायलिन का निर्माण गास्पारो बर्टोलोसी अर्थात गास्पर द साल्वो द्वारा किया गया है। कुछ जानकार वायर से वायलिन की उत्पत्ति मानते हैं और कुछ संगीतज्ञों का मानना है कि वायलिन का विकास रिबेक और रबाब वाद्य के आधार से हुआ है। इसका आविष्कारक भले कोई भी हो अथवा किसी वाद्य से उसका विकास हुआ हो, उच्च प्रमाणों के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वायलिन इसी सन 1505 से 1530 तक निर्मित हो चुका था। भारत में वायलिन का प्रयोग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हो रहा है। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में वायलिन का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय श्री बालुस्वामी दीक्षित जी को दिया जाता है। उत्तर भारत में वायलिन का शास्त्रीय संगीत में प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। श्री पी ए सुंदरम अय्यर, श्री गगन बाबू, बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां, श्री बलवंत सिंह हुन आदि कलाकारों द्वारा वायलिन पर उत्तर भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया गया। सच पूछा जाए तो इन्हीं कलाकारों द्वारा वायलिन की लोकप्रियता का श्रीगंश हुआ। तत्पश्चात श्री वी जी जोग, पंडित गजानन राव जोशी, श्री डी के दातार, श्री एम एस गोपाल कृष्णन, डॉक्टर श्रीमती एन राजम, श्री सुशील कनाधर चौधरी और श्रीधर पालसेकर आदि कलाकारों द्वारा वायलिन का केवल प्रचार ही नहीं बल्कि उनके द्वारा इसकी वादन तकनीक को भी अत्यंत समृद्ध किया गया। तो आइए सुनते हैं

नाकी 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबरी, हिंदी अनुवाद जयंत पाठेकर, प्रस्तुतकर्ता अनुष्य पाठक। आज के लिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: इस उत्कृष्ट प्रतिचार से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर दिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमोशन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमोशन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन की सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दासगुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर यह आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। याचिका के घावों से लहू लुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: कार्यकाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चुड़े

अपराधियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भाग

आपके अधिवेशन शुरू हुआ। विपिन चंद्र पाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। सभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक गम बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मांगो जाए जौन जीवन

0: सभा के सामने प्रस्ताव रखा।
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाना चाहे।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पास गया और बोला,
3: Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जन समुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
3: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया। अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
3: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं,

धर्म की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बारिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा

0: प्रसिद्ध गुरु पर श्रद्धा की ये थी बच्ची की कवि। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबरी, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नायक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुज त्रिपाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री निकुल प्रदीप साथ कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: किसी मन भूले कार्यक्रम उजाले

राष्ट्रपति के हाथ में बोकारो के सीआरपीएफ के बाद राज्य में जश्न का माहौल, सम्मान पाकर भावुक और उत्साहित हुए मुख्य निर्वाचन कार्यक्रम के लिए एसडीआरओ के रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए रांची के सभी बूथों पर

नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली, हम अपने टीम के साथ वहाँ गए, ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। आतंकवादी जो था वो फॉरेन टेररिस्ट था, वो हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के इरादे से।

किसी भी तरह से अगर पानी चौक होती है तो ह्यूमन अगर को गार्ड करने के लिए कवच की प्रणाली है और ये एक अच्छी प्रणाली है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि

Channel is

Então, nesse,

बात कहाँ तक पहुंची है? 1,36,000 करोड़ के मामले में वापस से आपने झारखंड की जनता को क्यों गुमराह किया? लैंड एक्विजिशन को आप क्यों सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा वापस से रिम्स रुपया जगह

और भारी बारिश की गलत सूचना मिली और इस अलर्ट जारी और हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय दिव्यांग टी ट्वेंटी क्रिकेट सीरीज के लिए झारखंड के चार प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन निशांत नीरज कक्कड़ और बाबू

guy gave him just as his son and partner in

हजार जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवा।

0: पिता कभी प्रभु के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद

0: veramente आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली और किसी भी व्यक्ति की जरूरत सुना लेंगे जरूर मुझसे पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं संसद मार्ग नई दिल्ली 1800
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मन की बात के लिए।

जानी मानी ऐसी अदाकारा जो है

परिवार में जन्मे।

14

कवाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुशी रखकर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुमने से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्में पढ़ने की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें,

गुरुदत्त को श्यामा मना रही है। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

खड़ी हो।

जिन्हें श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेलुलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। बनी मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में बनी मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

के पति मनु मिश्री उन्हें इस पानी दुनिया में अकेला छोड़ गए, लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी। वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गई फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवे दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

हिंदी के चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया।

दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिस्टर साहिबा, खानदान, छोटी बहन, श्री सुंदरी, भाई भाई, शुमंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत सिनेमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आए, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकर्षित किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेलने, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, फायर की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गई इस पानी दुनिया से, ले गई फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है। उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थे, उन्हें छू कर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है।

मैं आप आकाशवाणी जमशेदपुर से विविध

Ça

Marco.

ऊपर वाले की दया है।

tarde, en Facebook.

कि हमारी जिंदगी पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक संभावनाओं से भरी हो गई है। हमें थोड़ी देर है फिर हर दिन बेहतर होने जिंदगी पर ही पहुंचना चाहिए। बच्चों की परवरिश भी ऐसे ही होती है, समय का गुजरना महसूस ही नहीं होता, उनको हर दिक्कत है और हर बार नाखून कटना महसूस होता है कि बच्चे थोड़ा और बड़े हो गए हैं। कुछ बच्चे भी सब दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चों का चलना सीखना, पहली बार बोलना या उन्हें और तरीके सिखाना, करनी होती है जैसे शोर। ये बदलाव बिना किसी शोर शराबे या घोषणा के नहीं आते। रोजमर्रा के सवालों में उलझे

रहे थे, लेकिन इसी अव्यवस्था के बीच धीरे धीरे बिना प्रगति की बात हो रही है। बस जरूरत है हमें थोड़ा ठहर कर उसे देखने की, शिकायत की जगह शुक्रिया।

बच्चों को फूलों की उपमा दी जाती है। हंसते खेलते प्यारे प्यारे मासूम बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे बच्चे ना चाहते हैं। बच्चों से भरा पूरा परिवार के मन में चाहते चिड़िया के समान होता है। हंसते मुस्कुराते बच्चे, खेलते कूदते बच्चे, खिलखिलाते मारते बच्चे, शरारते करते बच्चे, स्कूल जाते बच्चे, बच्चों का ये संसार खुशहाल अनोखा होता है। पर ये मासूम बच्चे का शोषण और जीवन का शिकार होते हैं। बाल श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, घरों जैसा पीते जाते हैं, कचरे में से चीजें बीनते हैं, घी के लिए गुड़िया हाथ फैलाते हैं, बिड़कियों का गालियाँ फेरते हैं। स्कूल क्या होता है नहीं जानते, तब इन मासूमों का तरस आता है। तब लगता है दुनिया में सब बच्चे समान नहीं होते। दोस्तों बच्चों को तो सभी समान तो ठीक माना गया है, लेकिन उनका बचपन समान नहीं होता। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कहीं न कहीं पत्थर के खदानों में, बच्चों के लिहानों में, कहीं किताबों में, कहीं दूसरों के बुलाने की अपने बच्चों को पास करने के लिए अभिशप हैं और अपने बच्चों की कीमत पर दूसरों के लिए दौलत पैदा कर रहे हैं। जहाँ जो परिवार गरीब है उसी घर में बच्चे फैमिली लेवल का हिस्सा होते हैं। अमीर और सक्षम परिवार के बच्चे उत्पादन में हाथ नहीं बताते। संस्कृति कोई जूते की फैक्ट्री है तो उसका बच्चा उसमें काम नहीं करेगा, लेकिन जो बच्चे जिसके पिता जूता साफ करते हैं वो बच्चे

Thank you.

हमारे लिए गर्व की बात है कि बालश्रम को एक नए नजरिए से देखने और समझने की हिम्मत एक भारतीय ने की और उन्होंने अपने भीतर इस महाजाल से मासूम बच्चों को मुक्त कराने के लिए उनके पास रखा था और ये कोई और नहीं बल्कि ये है कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें साल 2013 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चांदी की चर्चा की शुरुआत में बालश्रम के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया। बालश्रम जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ उनके अथक परिश्रम के कारण ही भारत सरकार ने साल 1986 में बालश्रम निषेध और विनियमन अधिनियम को लागू किया। कैलाश सत्यार्थी ने बालश्रम के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी वैश्विक जन जागरूकता यात्रा की शुरुआत की थी और ये यात्रा 6 जून 1997 को यूएनओ के मुख्यालय के दरवाजे पर समाप्त हुई और आखिरकार 2002 में ये घोषणा की गई कि हर साल 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम

0: की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
1: मेरे मन की बात के सदन में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी मार्ग नई दिल्ली को सुझाव देंगे जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मन की बात आकाशवाणी संस्कृत मार्ग नई दिल्ली 1100001
1: आपको निमंत्रण देता हूँ। मेरे मन

देखी दीदी, हमारा फोन नंबर है 0607 296 0445।

हमारे लिए बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारी वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर।

तो 1960 का वो जमाना जब हिंदी सिनेमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा था और सभी क्षेत्रीय कलाकार हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ऐसे में मुख्य प्रधान अभिनेत्रियों को नई रूपरेखा देने का काम किया अभिनेत्री पद्मिनी ने। आज है इन अभिनेत्री का जन्मदिन। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके चरित्र के बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। को आम जनता को कहा जाता है। पद्मिनी का जन्म तिरुवनंतपुरम में 22 जून 1932 को हुआ था। इनके परिवार में सभी लोग भरतनाट्यम में माहिर थे। तमिल, तेलुगु और मलयालम सभी फिल्मों में एक साथ एंट्री लेने वाली पद्मिनी की रिलीज हुई थी। सभी मात्र 16 साल थी। लेकिन जिन हिंदी फिल्मों में काम किया सभी हिट रहे। हिंदी फिल्मों में शामिल है मेरा नाम जोकर, जिस देश में गंगा बहती है, आशिक, अमरदीप, पाटिल, अफसाना, वासना, चंदा और बिजली जैसी मशहूर फिल्म। एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद 1977 में पद्मिनी ने अमेरिका के न्यू जर्सी में मिडिल स्कूल जो आज अमेरिका का एक प्रतिष्ठित डांस स्कूल है। अपने अभिनय और कला से पद्मिनी ने भारतीय सिनेमा को बहुमूल्य

बाजार में बिकने वाली कोई बूटी है? जवाब है नहीं। इम्यूनिटी वर्षों में तैयार होने वाला सुरक्षा कवच है जिससे आपका शरीर बनता है। हमारे शरीर का ये सुरक्षा प्रणाली है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जैसे कहीं से भी आए उनसे शरीर को बचाने की जिम्मेदारी इसी बनती है। दीवार का काम करती है या पेट करेगी जो कीटाणुओं को मार देती जो शरीर समय के साथ खुद विकसित होता है। किसी नए वायरस के संपर्क में आने पर हम कुछ समय के लिए बीमार पड़ जाते हैं मगर थोड़े समय में ही जान जाता है कि इसे कैसे हराना है। शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है जो आपकी इससे जो चपेट में गर्म आ गए तो हमें खुद ही इसके लिए सावधानी और ये इम्यूनिटी जो है वो खुद ही सक्रिय हो जाती है। और दोस्तों इम्यूनिटी कोई मास्क

तो और साथ ही हमारे शरीर के अंदर 70% हिस्सा जो होता है वो आंतों में होता है। दही जैसे खाद्य पदार्थ अच्छी बैक्टीरिया बढ़ाते हैं जिससे पाचन बढ़िया होता है। तो दही का सेवन तो जरूर से ही करें और विटामिन डी के लिए सुबह की 15 से 20 मिनट की धूप रोज लें। हर तरह सब्जियाँ संतरा पालक

करें और अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए

मिलती है सुलिखा था, और संगीत

प्रधान क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर यह लग

जीवन समाचार भी आप सुन लेते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रसारण से। हम आकाशवाणी जमशेदपुर से विविधता की तरफ से बोल रहे

0: ऑफिस आकाशवाणी है। मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: तो बता दो आकाशवाणी से संपर्क कैसे करो?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओह, 8700001424।

0: सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें, जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: तो सुनना न भूलिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14

पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजें में नंद किशोर जोशी के बोल थे। शंकर इंसान लाल का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ से, गुलजार के बोल

प्रशासन की आवाज़ बनी। गुजरात के बोर्ड में राहुल देवबर्मन का संगीत।

0: से भेजा, दोनों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादव की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी

कहा, क्या यही सता है? कोई जो मोहब्बत के दिल ने कहा, तो फिर कब मिलोगे? इस बात का वादा करो। इस बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, नाजी छीते ना। उसकी अदाएं मन मोहने लगे, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था, और फिर दिल शायर बन गया, गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके सामने आ गए आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है यहाँ पर, यानी संभालने की बात आई है, उससे कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम है, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखिए आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है? अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने, सुनी होगी, और याद कीजिए कोई कहानी, या फिर कोई गाना, या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना जो यहाँ विविध भारती के पेज पर लिख सकते हैं, तो बताइए कहानी। और आप भी कोई इबारत लिख कर भेज सकते हैं

से लेकर आई हूँ कार्यक्रम सुनिवा सफर। तो बनाइए रेडियो की आवाज, लेकिन रिश्ते का ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं, तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने कई श्रोताओं ने मजबूर गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदल कर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे और ध्यान से जरा

और न ही कोई ख्वाब याद आया। पुराना हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने बचपन में कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई।

ते हैं कि मेरा लाती कविता सुनाओ कि कुछ तो लिखते थे मैंने लिखा कोई बात नहीं आगे लिखते अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए सिर्फ अपनी टिप्पणी या साझा करके बैठती मत आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है अगर हम पढ़ कर नहीं लिखवाते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं ज्यादातर लोगों की टिप्पणियाँ हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि इसमें कितनी बातें हैं बल्कि ये है कि इसमें कितने लोग बसे हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं सीधे दिल से जोड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी लगती हैं क्या बात है एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्म पत्नी है जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि इसके अलावा कई और दिल नहीं लगाना है और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल किसी का दीवाना हो गया क्या बात है बहुत बढ़िया एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल कराना दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन की क्रिया सफर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं घटनाएं भूलती नहीं किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जो रूठ जाती है

स्तरीय बैठक में कई मसलों पर सरकार ने 7 दिनों के भीतर खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय कुश्ती टीम के मुख्य कोच जसपाल राणा का 49 की आयु में दिल्ली में निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के लिए होने वाले विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता।

Israelites.

में देखा उन्नत कृषि करने का एक बहुत किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया में अपने समय पर 20 साल खरीद कर खेतों में जो अपना काम कर रहे हैं उन्नत

देने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विभाग ने कृषि सारी नमक और दाल योजना का शुरू करने के लिए टेंडर शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही सभी पात्र परिवारों को बकाया सामग्री मिल जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें व्यक्तिगत हेल्थ केयर में अस्पताल निर्माण और उपकरण खरीद पर प्रस्तुत की। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को स्मार्ट जिलों की विस्तृत प्रस्ताव सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को

रैंकिंग और प्रतिष्ठा में बड़ा सुधार हुआ है। लगभग 10,200 से अधिक स्वयं सेवकों के साथ यह रैंक झारखंड के सबसे सक्रिय छात्र संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह रैंक राज्य में वृक्षारोपण, रक्तदान, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान

0: समर्थन कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की सलाह दी।
1: इस तरह से कांग्रेस जो है उछल कूद कर रही है, उससे प्रतीत हो रहा है कि हमारे समर्थित प्रत्याशी लाखवाने जी पिछले बार से अधिक वोट जीत करके राज्यसभा में जाए। कांग्रेस का एक तरह से विधानसभा के अंदर छाती पीट रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस झूठ के कगार पर है। मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है।

तो घर के बराबर के भी है।

जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

विधानपुर से रहा है और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले

सरकार ने गरीब परिवारों को बकाया राशन एक मुश्त देने की प्रक्रिया सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के आधुनिक अस्पतालों के लिए मांगा विस्तृत प्रस्ताव और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं और भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच

चाहे कुछ लम्हों का साथ क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, ये बताते हैं कुछ अभी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहाँ से कभी हम साथ गुजरे थे और आपके दिल में दिल वो जगह है जहाँ से कभी कोई जाता नहीं है, हमेशा टिका रहता है। आप चाहे भी चीजें पलावर्ती दिल से चला जाए लेकिन मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहन में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप मेरे भाती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vvsmumbai। ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे रवि भाती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है

श्वेता ने लिखा है कि वो दिन कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्वेता ने लिखा

भी तो अंदाजा लगाइए, देखते हैं कि आप जैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे जो हमारे पास थे, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है, और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊंगे तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनाया। फिर एक सुधा ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक सुधा ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका ने गुरुदत्त आशा पारेख, और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की चुप्पी बनाई है। एक सुधा ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारेख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियाँ भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ाने में मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने कैसे प्रबंधता था वो नहीं बता सकते। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपनी डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्री क्यों करती है, मैं हूँ ना, पर अफसोस वो अब नहीं है। ओह, एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास सांस की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों

गुरु जी का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है। आशा पारेख और शशि कपूर।

completamente y así

something that

श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद और गीत का संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी ने लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बस साथ में कौवा का गोबर का घर बन जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रचलित है और हम सबने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों की बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती है। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़ कर सुना दें, या कोई वो बताओ लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत गाली है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिखता रहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कर कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहाँ मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है। लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, मशहूर शायद साहिल बिहारी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती है कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती। प्रेम कहानी सरबटेगी और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। वह प्रेम के साथ दर्द से जुड़ जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा भाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नजर भी डोरा पीट थी प्रेम लिए जिसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है। फिल्म बड़ा है और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरूर सुनिए तो और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी। जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना

था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज है।

सफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उसको लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है

फिर ये बात फिर लाएंगी और जो इबारत है इबारत में जो शब्द है फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो। तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं, प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध

श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है। इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती है, कल आओगे ना, मिलोगे ना। भाई ये तो बहुत का सवाल है और ये गाने में जरूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो प्रस्तिको था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है, तो बोलते हैं मुझे प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो छस्ती क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक गीत है। गाने को सुर को खिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती है और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ। मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता है। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहे। अब दिल दिल ने पुकार

चीजें अपनाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने दिखाया दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनाना, लेकिन कुछ टिप्पणियाँ भी आप तक पहुँचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें पीस देती हैं, बात अधूरी रह गई साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पति देव मुझसे भोपाल मिलने आए करते थे वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गए, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन

सफर बस इतना ही। सुरीला सफर का यह सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सिटी मन पसंद के साथ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबरी, हिंदी अनुवाद जयंत पाठकर, प्रस्तुतकर्ता अनुष्य पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: विचार से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्र नाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे जुड़कर मजिस्ट्रेट एमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी एमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्र नाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्र नाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दासगुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा

थी,

0: उनके आने से सभास्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहूलुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिभा से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: कार्यकाल का एक युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से जुड़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्र पाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। कभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का

0: ने प्रस्ताव रखा
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निश्चित हत्या का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई विल स्टे हियर विद यू। बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आई हैव टू ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर।
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जन समुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
3: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया, अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए।

0: परमेश्वर के रहे, खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निश्चित आज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बारिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
3: आपको जेल में

श्रृंखला की ये थी बचपन की कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबरी, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नायक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

Jesus

इसलिए पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ सीट को 2% से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रक्रिया के बाद कुछ छात्रों विशेषकर बाल भर से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुझाव किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उत्तम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कमेटी का सहयोग करें।

seduta sta

सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए सुनते हैं अनुपम फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना की शैली अमरीकी संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए सुनिए रॉकी की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

super, vai. Se non rega, non canta. Acci, sovano, copanai e cas. Bule, vitri, di. Pedros, se vuoi sabato, se vedi parti per. विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदा बहार नजर। दिल दिया दर्द दिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, श्रुति वृदायनी के बोल।

0: अनिवार्य परीक्षा उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। सीबीएसई ने कहा है कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों को प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2% बढ़ाकर तैयार कर दिया है। पुराने लेआउट से असुविधाजनक खोलने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों का सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार धारकों के लिए करने के लिए झांसी भर में आधार सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत कर रहा है। आधार नामांकन नागरिकों से केवल अधिकृत केंद्रों से ही सेवा

योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पंचायत स्तर पर विभागों के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की मांग की। आज भारत आदिवासी पार्टी के शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार

को पांच सौ रूपए विश्व सोने के मामले में दोषी ठहराया है। वर्ष 2006 के इस मामले में सच नहीं है। इस वर्ष के अलावा ₹450 जुर्माने की सजा हो गई है। जुर्माना नहीं देने पर शर्मा अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जमशेदपुर में नशा मुक्त भारत शुरुआत की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर

0: अपने परिवार को नफा से मुक्त रखें, जिससे हम अपने
1: मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून के झारखंड के पूर्वी हिस्सों में प्रवेश कर गया है। मानसून की वर्तमान स्थिति की संभावनाओं तथा राज्य में

दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण से पहले पृथ्वी से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र है। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई दिनों में खेल कूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार। बस उसी फोन की घंटी, देखते हैं किससे छूटा है ये पहला कॉल।

0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी शिष्या हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे।
1: इतना दिन से पढ़ाई कर रही थी।
0: जी हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो
0: जी। तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं, तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंजलि।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: अभी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी
1: सर बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है। चांदनी जी क्या करती हैं आप, किस काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी। मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी।

0: है ना राधे जी। अच्छा मुझे बताइए बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा क्या बात है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक टेंट में है।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं, तो हम आपको यादों के गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियाँ होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियाँ लेकर आते घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो मम्मी कवर चढ़ा के दो, बहुत इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले खाकी कवर, उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते थे बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी काफी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्चे अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना।
0: बिल्कुल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?

0: हो रही है हमारी।
1: हम धनोजय सवाल बोल रहे हैं झांसी से।
0: झांसी से धनोजय सवाल। धनोजय मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे तीन बच्चे हैं
0: जी। तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ हाँ बड़े हो गए। एक तो बड़ा है।

0: थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उससे कवर चढ़ाना हो या फिर उनके झगड़े होते थे,
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात से मुझे बताइए आप कौन से टीम का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी जाते लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का चलिए जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: खत्म और सुनते हैं किसकी गिनती आज हो गई है। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधुजी जिंदवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु सिंह जिंदवाला जी जी, बताइए मधु जी कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, हम बताइए
0: जी। हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण रह नहीं है पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: जी देखिए, ग्रहणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ
0: जी। तो आपकी कोई रचना आप हमें

0: na fanatic. Nam na khoche bichi puroi. Nam na khoche bichi puroi. Patwar jindagi ki jang khai. Sar kiya tere hawale khuda ko. Dekhi jab parawar ki gehrai. Jab se tumko na khuda maana hai, tujhse hua yakeen ho jana. Baithe hain safine par tere yakeen se. Baithe hain safine par tere yakeen se. कृपा पे ढूंढती नहीं ठिकाना है कि भैया दुकान कविता है।
1: बहुत सुंदर कविता। आप कहती हैं साधारण महिला है, कहाँ इतनी असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: सरस्वती चंद्र का छोड़ के साथ दुनिया की
1: जी, बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से

0: अच्छा गेंदे का जूस सेंटर, तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाल बता रही हैं इन दिनों।
1: हाँ उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप होती भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।

0: का रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत बहुत बहुत
0: हाँ। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है वो टाउन में से रहते हैं यहाँ पे।
0: तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उसको कवर चढ़ाना, तो ये सब जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल, और छोटों में भी ऐसा करके जो पढ़ाई नहीं तो ध्यान रखते थे उनके, फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, मैं बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपको
1: ऐसे करते थे? हाँ, ये शाम भी करते थे, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर है, तो कैसे हम उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है, तो देखिए ना, बच्चे के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
1: बहुत बहुत मैम
0: जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा वैजयंती जी। आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
1: बहुत पसंद है।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का गीत।

0: से बात हो रही है हमारी, आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्षिया है।
0: कहाँ से बात कर रही है अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है,
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ। तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है, घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको इस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव

सभी को बहुत पसंद आते थे बेसिकली। वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद

0: तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी जी, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे से मजबूत उसकी छत को छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दरी रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब्द हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, जरीतों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं की खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बढ़िया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो, और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज की दिन बताइए, आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदरता जी आपके लिए प्रस्तुत है।

0: जब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करते हैं जी, तो ऑर्डर कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेते
1: हैं? घर के जैसे सब लोग जॉब के रहते हैं ना यहाँ, मतलब अम्बेडकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है, यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं।
0: अच्छा,
1: जॉब वाले तो हम लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देते हो।
0: क्या बात है, तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है, तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं और अचार और पापड़ बनाना, ये हर एक की बच्ची बात ही, उसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए शारदा जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप उनकी पसंद का।

0: सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं वहीं पर रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने ये बताया आप डॉक्टर हैं, सुविधाएं आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगे आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हम बताएंगे आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे आपका ट्रांसफर हुआ है, किस तरह से मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर सुधी। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में है? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अभी यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं का, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा, तो इसीलिए जड़ से उपचार करके हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर क्योंकि हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे,

0: से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: चलिए आप इसी प्रश्न का सुनते हैं।

0: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम सुनीता उइके।
1: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
0: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
1: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
0: ये पास में वाराणसी है और बालाघाट है।
1: जी बालाघाट के पास में, तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
0: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
1: ग्रहणी हूँ,
0: घर का काम खेती में काम करती हूँ।
1: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
0: हाँ दीदी, आज दीदी
1: जी। तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
0: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, आपके पति है, दो बच्चे हैं
1: जी।
0: और एक है, एक मेरा है।
1: हाँ अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
0: नहीं नहीं छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा, 4 साल का बर्थडे है उनका।
1: जी तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
0: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
1: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं।

0: बहुत मजा आया। आपकी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्मों का गीत सुनना था, मेरे घर आई है तो मम्मी करी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का।

0: ये बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी जोर उसका सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनवा का तारा ना लेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आपकी की यादें ताजा की और खुद की मन की बातें आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एक्टिविटी कोड है 02, अंग्रेजी में 02240024662, 02 मुंबई का एक्टिविटी कोड है, अन्य नंबर है

पार्टी भी कोड है शून्य दो दो, अंग्रेजी में 02226708888, 02 मुंबई का एक्टिव कोड है। हेलो सभी, कार्यक्रम में आज जिन किस्म के कॉल लगे हैं हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले दो महीने के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य किस्मों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रहे हमारे इंजीनियर अमित गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता सिकोरे ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को कृपा माहेश्वरी का नमस्कार। सुबह हेलो सहेली।

Molto più vicino a

आकाशवाणी जमशेदपुर विद्यार्थी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 1.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज के प्रसारण के लिए आइए दूसरा विद्यार्थी की राष्ट्रीय सेवा। उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में सीधे सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहनी लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। महंगी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर चेहरे उसके काले घने बाल थे। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। दिन में एक नजर उस लड़की को देखा लेकिन उसे दोबारा देखा ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

प्लेट में टूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जींस और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने नीली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और फिर नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठी। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झूठती हुई नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गई। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह, कमरे की खिड़कियां चमक रही थी, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटा कर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, ए4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें दो तीन पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी है। अंजलि पलट कर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहाँ रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि यानी कितने सालों से डायरी लिखती रही है। और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी

0: और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? ये हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में।
0: नहीं, हॉल में सिलो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो।
1: वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो,
0: पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रख पाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40 कदम पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा, ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस से निकल गई।
1: अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलते स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छू कर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छाव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
0: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
1: क्या बताऊं?
0: यही कि उसकी माँ उसे बुझा चुकी है।
1: चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की उम्र का प्रेम बोला।
0: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
1: पर बताना तो पड़ेगा ना।
0: पता नहीं। उसके माथे पर आती लज को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है,
1: तुम परेशान मत हो पल्लू।
0: प्रेम ठंडी आए भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुक कर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो इसी बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी।
1: ओहो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा।
0: पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

सुसाइड कर रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है, कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं पूरी शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर से बाहर ही खड़ी है, पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नींद दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल से फिर आगे की सब्जियां रोटी ले आऊंगी, कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ही कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में छोटी हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में अंजलि के मुंह से निकलता है, शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, दिन की शुरुआत भी अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है,

बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एक तरफ देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंची, लेकिन वहाँ दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछ के अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि को उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद ने खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थाली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही घर से गली में मुड़ गई।

शॉर्ट और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर फैल गईं। अरे ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झुका लेकिन अंजलि ने पीछे से मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया

बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार भी चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोच कर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हंसकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसकी चेहरे से चिपकती गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचता ही था कि पेड़ के बगल के पास से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने हिम्मत करके बात की, हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा, नहीं सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देख कर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया, अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दाया हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मैं कब? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हूँ? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी कि चाय पियो भी। हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो क्या मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ मैं कर लूंगी। बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उसे समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो। आखिर की आदत है। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मैं नहीं जा रही हूँ ना? देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही, शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध लो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। हाँ बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देखी तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देख कर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का प्लान था, इसलिए तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर ले गया। सफेद शर्ट, नीली जींस और स्पोर्ट्स शूज उसकी पर्सनैलिटी पर नच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन इस पर सवार दो जवान दिल अपने नॉर्मल

0: जनती कहते हैं।
1: सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए सरकार 2026 के आवेदन 30 मई से खुले हैं। सिमरन के लिए विजिट करें askar.edcin.co.in।
0: अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से। मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की, टेबल से रखे उसके दोनों हाथों को हल्की हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के पीछे पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रही। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम देखते रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की टपक अरविंद के सीने पर लगाई।

चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम फिर से टेंशन में हो, प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बंठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा फिरा है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, ये तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। ये सच में, और दूसरी बात तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस इसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक है फिर, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो, कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी

से देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा पाप देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में

को भी नहीं लिख रही लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था, बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा, पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी। दादू दादी गाँव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ, मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया, फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है, हल्की बूंदा बांदी से सड़कें भीगी हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगर से धीमी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का प्रीवियस टॉप पहना था, सारा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चिढ़क कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानी के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद की इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मैंने देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा था, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भाग गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर

पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में चकाचका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ तो रखी, शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसी क्यों, पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू फोन आते ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करते हुए बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आज की चटनी पसंद है ना, इतना काफी नहीं क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर भी टिकी थी। उस मुलाकात की बात से अरविंद नजर भी नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस के मौसम ने कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ के डाल के सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसके सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है, और ये सोच कर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास उठ गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। जी हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सर। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ न कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन उसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने से जा रही थी पर कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता न

उनका कॉल समझ कर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस चीज को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में होगी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था, हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। पूजा लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई बीच के पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उससे पहले अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो, सच क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गई। क्योंकि यही सच है, अंजलि अरविंद को आज कड़ी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। उसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे।

मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं। इस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूँ। बुआ तुम प्यारी लगोगी साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देख कर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना, पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

सहयोग काजल भदर के, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान,

you can accept it.

That's

जाए, जंगमा के नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोक की वो कयामत, बातों की बातों में क्या बात हो गई, पंछी क्या झुकी,

वादे सभा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपकी प्यार की दास्तान ये सुनाती है, कुछ तूफान दुनिया चलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना। तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत

0: से उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले

0: फरमा नई दिल्ली, अगर चिट्ठी से जरूर मुझसे पहुँचाएगा, जरूर उसको
1: शुक्रिया। माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए एक सुझाव देना चाहते हैं।
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात।

7, Psalm 96, Handel 445. हेलो आपकी परमाश्वर संजीव जो आप चाहिए

que tarifem film sendiri. इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ सीमा। नमस्कार। दोस्तों, जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन खुशियों का नाम है, जीवन उन पलों का नाम है जिसमें आप खुल के जीते हैं।

तीन के घर से मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण मेरी पक्की उस मायने में है कि एक ऐसा व्यक्तित्व या एक ऐसा चरित्र जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हो उसका नाम योजना से जोड़ा जाए यह कदापि उचित नहीं है।

0: वहाँ मर रहे हैं मगर बड़ा प्रेमी नहीं है। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारे के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि नहीं
1: उनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता मई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत,

के जीवन से जुड़ी कुछ यादें, जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद पेंट सीधा उन्होंने

feet

0: अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में थी। फिल्म का नाम था सिलसिला।
1: अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ

0: की अपनी फरमाई और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे बीच कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400092 मन चाहे की विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेश राहुल जी बर्मन का संगीत मजनू सुल्तान सिंह के बोल शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है।

0: सुनते हैं नाटिका सफेदे के पेड़। लेखक है रेती चरण शर्मा और निर्देशक दीना नाथ।
1: कौन कौन अब्दुल करीम, तुम क्या जगह नहीं आए?
2: हुजूर मेरे साहब, मैं क्या करूं? साहब कहते हैं पहले उन्हें दे आओ, आप कहती हैं उन्हें दे आओ, मेरे तो कोई सुनता नहीं।
1: तुम्हारी
2: जी, मैंने साहब से कहा आप ही मान जाइए, और अगर नहीं मानते तो मैं डबल चाय लाता हूँ, आप भी इधर ही पी लीजिएगा। लेकिन वो मानते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: कहते हैं अब्दुल करीम, मैंने कल उनके साथ इतनी गुस्ताखी की कि आज किस मुंह से चाय पीने उनके पास जाऊँ।

0: कहा हुजूर मेम साहब उसी में आया कि कह दूं मेम साहब इतनी छोटी तबीयत के नहीं है। पर हुजूर डर गया कि कहीं आप
1: इसमें डरने की क्या बात, गलत फहमी में ऐसा हो ही जाता है। मेरे दिल में तो कोई बात नहीं, वो आना चाहे कुछ वक्त से आ जाए। ऐसी तो नहीं कि वो आए और मैं कोई बदअखलाकी बरतूं।
0: बस तो हुजूर मैं तो आपके हुक्म के इंतजार में था, मैं अभी जाकर कहता हूँ।
1: लेकिन सुनो तो
0: हुजूर आपका आकर ही सुनूंगा।
1: ओहो
0: दावत नामा कबूल करने के लिए
2: कैसे दावत नामा?
0: हुजूर मेम साहब ने कहा निकाल लिया, फरमाया दोनों में से कोई भी अगर पहले चाय नहीं पीना चाहता तो फिर दोनों साथ पी ले। साहब को बोलो

0: कैसा लगा था?
1: हुजूर कसमें साहब ने काल निकाल लिया, फरमाया दोनों में से कोई भी अगर पहले चाय नहीं पीना चाहता तो फिर दोनों साथ पी लें। साहब को बोलो अगर एतराज ना हो तो मेरे ही कमरे में पी लें।
0: क्या उन्होंने कहा है?
1: जहाँ खुद कहा है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। बंदा सिंगल के बजाय डबल प्लेट लेकर

0: iyi çatı diyor. Sonra ise yaramı terizdi kudar. Ne akıp diye hep şükür kudar.
1: İsmi şükriye ki kya bahsi. Mujhe to jaise hi Abdul Karim ne kaha ki sahab kehte hi kal ke waqiye ke baad ye kisne se chai peene mere kamre mein aaye
0: ji Abdul Karim ne kya kaha
1: ye ki ki aap uski baat maan kar chai peene yahan aa jate lekin
0: kiski baat maan kar
1: Abdul Karim ki
0: aap kya kar rahe hain
1: kyun
0: Abdul Karim ne to mujhe ye kaha ki aap ne zeher nikala hai ki agar dono chai pehle peena na chahe to phir dono saath pee le
1: kya
0: ji haan
1: यानी आपने खुद यहाँ आना नहीं चाहा
0: कतई नहीं तो आपके बुलाने पर
1: गलत मैंने आपको नहीं बुलाया मैं तो बुलाती
0: तो मैं तो आता था
1: मुझे क्या मालूम
0: लेकिन मुझे मालूम है मैं इतना गरीब हूँ कि
1: तो क्या मैं इतनी गरीब हूँ कि अरे घरों को
0: देखिए ऐसा मत कीजिए
1: तो आप ही मत कीजिए
0: मैं क्या कह रहा हूँ
1: आपने कहा नहीं कि मैं इतना जलील नहीं तो क्या मैं इतनी जलील हूँ
0: नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा मैंने तो उल्टा आपका शुक्रिया अदा किया
1: तो क्या मैंने खुशी जाहिर नहीं की थी मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस बकबक और लड़ाई झगड़े से इसलिए तो भाग कर कश्मीर आई थी
0: और मैं किसी आया था आपको मालूम नहीं मेरी जिंदगी में कितनी सर्द थी लोगों की बेरुखी और नफरत के बच्चे आमन चैन और खामोशी के कुछ सांस में यहाँ आया था मगर मेरी बदनसीबी के प्यार कदम आगे चल रही है अपनी खुशी से हासिल करता दूसरों की खुशी का दुश्मन बन गया
1: और क्या मैं इस इल्जाम से बड़ी हूँ सतीश जी मुझे क्या औरत बन रह गया है नौकरी करके टीचरों से लड़ लड़ के घर वालों की खुदकशी और बाहर वालों की नफरत देख देख कर मेरे अंदर भी क्या कुछ कोमल भावुक कविता और कल्पना से भरा रह गया है सतीश जी मैं खुद सूखी नदी बन के रह गई हूँ जिसके किनारे पर खास या इन पर खिलाना नहीं
0: चाहती आपका दोष नहीं है ये जिंदगी वो दुनिया उसके लोग ही रहते हैं ये सब ऊपर से देखते हैं तुम्हें खाकर कोई नहीं देता और ऐसे लिए कि मैंने भी ये क्या बात शुरू कर दी आपका अच्छा बड़ा मूड खराब कर
1: दिया नहीं नहीं आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ
0: अच्छा तो बाहर आइए ना देखिए क्या तुम हो रही
1: अरे हाँ आइए हाँ जरा गुलमर्ग को देखिए कितना ओसीला कितना हरा भरा और कितना आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला लग रहा है
0: अरे सच कल दोपहर आए थे तो बड़ा बासी बासी सा लग रहा था पर अब होश में नहाकर घास कैसी जगमगा रही है
1: और हरे भरे घास के ऊपर से ये देवदार के काले काले जंगल तो कलर संतरास्त है
0: और उनके ऊपर पत्थर की ये चोटी तो देखिए तो बस क्या शीशा की चमक रही
1: है हाँ सच में क्या प्यारी चोटी है बिल्कुल ऐसे लग रही है

0: होते थे, जहाँ से जंगल शुरू होता है, वो पोनियों पर।
1: हाँ हाँ, दूसरे कैसे जा रहे हैं?
0: हाँ, पकड़ अच्छे हैं इसे।
1: बड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे को।
0: हाँ।
1: उनकी बात

0: अच्छे से मजेदार थे या नहीं?
1: बिल्कुल, और आपका अंदाज जान तो उसने डाली। बिल्कुल, तभी तो बातों बातों में लगा कर यहाँ तक ले आए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी ऊँची जा सकती हूँ।
0: कामयाबी तो तब समझू जब आपको चोटी तक ले जाए, ख्याल पत्थर की वो नीली चीज।
1: ना बाबा ना, मैं वहाँ तक नहीं जा सकती, मैं तो बस यहाँ
0: बैठूंगा। कहते हैं कपाह शहीद की तरह लिखा होता है।
2: मैंने कहा संतोष जी को क्या बता रहे हैं रतीन साहब?
0: अरे
1: आप यहाँ हैं, मगर आप लोग कब आए? बस अभी
0: बात ये है चंद्र साहब, मैं आ रहा था और आप भी आ रही थी। मैंने कहा साहब चलते हैं, साथ हो जाएगा।
2: ये वाकई आपसे बहुत अच्छा होगा,
0: साथ वाकई बहुत अच्छा होता है।
1: गुलमर्ग से भी अच्छा होता है। मैंने

0: देखो आपसे मुलाकात हो गई, इनसे मुलाकात हो गई, इसलिए ऐसा लगता ही नहीं जैसे मैं अकेली आई हूँ। आप लोगों का क्या प्रोग्राम? हम तो नीचे जा रहे हैं अभी से।
1: हम काफी देर से आ रहे थे पर हमें लौटना थे। क्या आज ही लौट जाएंगे?
2: मुझे पता है
1: कल हमें तहलगांव जाना है। आप ठहरिएगा?
2: अभी कुछ सोचा तो नहीं लेकिन शायद एक रात और।
0: और तहलगांव?
2: देखिए जाना तो है मगर गुलमर्ग भी कुछ कम खूबसूरत।
0: जी हाँ गुलमर्ग कम खूबसूरत नहीं है। अच्छा तो हमें इजाजत है। अच्छा देखिए पहलगाम में मुलाकात हो रही है। हर खुशी होगी। नमस्ते नमस्ते
2: नमस्ते। देखा थी।
0: क्या
2: हम पर चिंता लगा?
0: पर मुझे बुरा नहीं लगा।
2: क्यों
0: मालूम नहीं क्यों उनका

0: मिलते हैं तो ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से न देख पाती।
1: और मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जिंदगी के तना दिन ऐसे कटे हैं कि मैं जिन चीज भर नहीं खोल सकता। आपका साथ, आपका हर वक्त मेरा ख्याल रखना, हम लोगों का एक साथ घूमना, चाय पीना, खाना खाना, उसको मैं सिर्फ जबान से आपका शुक्रिया अदा करूँ।
0: आपको शुक्रिया अदा कर देंगी, पर मैं किस तरह आपका एहसान चुका सकूंगी? पहलगाम में तबीयत खराब होने पर जिस तरह दो रातें आपने मेरे सिरहाने आंखों में काटी,
1: आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या ये इंसान का फर्ज नहीं होता?
0: पर आप इस दुनिया में फर्ज की बात करते हैं सतीश जी? पिछले साल मुझे 21 दिन तक टाइफाइड चढ़ा था। मेरी माँ, मेरे दो सगे भाई, मेरी दो सगी भाभी घर में थी, सब मेरे रुपयों के पलते थे, लेकिन रात मेरे पास कोई नहीं सोया। दवा और पानी का गिलास तक तो सब चले जाते।
1: उनका जिक्र न कीजिए संतोष जी, माँ बाप भाई बहन कोई किसी का नहीं मिला, सब मतलब ही हो गया।
0: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सतीश जी, मैंने घर वालों की खुशी के लिए शादी नहीं की, लेकिन मेरी खुशी की कोई नहीं सोचता। कोई शादी की बात भी करता है तो मेरी माँ कहती है मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसे शादी की हाय नहीं है।
1: बिल्कुल मेरी जैसी बात है। घर पर कोई भी आता है तो कह देते हैं नहीं साहब, भाई साहब शादी

0: kürönedi. Muzi önedi. Muzi sinko genko akbe önedi.
1: Roma tabuş. Roma अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे वो कह दूं जो आज तक मैंने शुक्राए जाने के बाद किसी से नहीं कहा।

संगीत लहर ने अभी आपने सुना फिल्म तनु वैश्य मनु का गीत राजशेखर के बोल और सुषमा का संगीत था।

0: अभी भी सफेद किरस्ती का उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: न न

0: 地不成。
1: Sunnah Huli, Nagarupak Saitana, Vande Mataram, Iris Jai Ho. Vande Mataram, Iris Jai Ho. Prasaran, Prati Suprabhar, Subah 8:15 tak. Punah Prasaran, Usi Din, Dopahar 2 Bajit. Vande Mataram, Iris Jai Ho. Nagarupak Saitana, Vande Mataram, Iris Jai Ho.
2: और आज का चित्रों का रिपोर्ट समाप्त

सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारतीय अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसे मिक्स को तलब कर भारतीय नागरिकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के

वो लोगों की जान चली गई, श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने निश्चित मानने का ऐसा और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन भाग्यभंगी शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के बलों ने मिलकर काम किया। भारतीय श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली चिप, दवाएं, सर्जिकल उपकरण और 7 टन विशेष भूमि शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु के 1,000 टन से ज्यादा खराब पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 164 लोगों की जान बचाकर पुलिस निकाला

0: स्कॉटिया और वेल्सिया, हम भी वो वेस्ट इंडिया, तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ हमारा रिलेटिव और सीएस बाकी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: बड़ा वर्ष हो गया कि मैं तुम्हें ऑपरेशन फाइनल बंधु जैसे पहले

0: सभी भारतीय महत्वपूर्ण यात्रा की जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशन को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,25,000 से अधिक स्टार्टअप और

सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल

जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया चिकन लेग से लगा हुआ है, इसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करेंगे। देश की सुरक्षा तथा

कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले दो दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, सरायकेला,

अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल

की इस फिल्म का जो गाना सर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, जिसको लिखा था

Vasi और सुनीता नाम था शर्मा। निजी कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मदन मोहन का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, लता मंगेशकर की आवाज, सुनीता नाम।

संगीत निर्देशन में गुलशन बाबरा की रचना, स्वर लता मंगेशकर का है और इस फिल्म में

सभी तेल का नाम था घास की सफाई। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंखें दी। गीत गुलजार साहब का और धन गाह

0: मेरे गिले नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहाँ पाऊंगी मैं तुम्हें?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है,

Yeah, if you do Monday, can you do Tuesday?

0: स्थिति में उतरते लेकर आज के फनकार। आज के फनकार है गुजरे जमाने के जाने माने ऐसे अदाकारा जो है बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।
1: एक

मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था।

फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुशी रखकर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूर जहाँ के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुमने से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने

Thank you.

देर से आ रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़े होकर डांस किया करते थे। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली।

के स्क्रीनिंग श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेलुलॉइड पर उतारते हुए उन्हें जेल में उतार लिया। बनी मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में बनी मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

श्यामा अकेले घर से घिर गई और उनके पति फनी मिस्त्री उन्हें इस पानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, फिर कदम दर कदम आगे बढ़ती गई फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवे दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सतत अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और

किरदार निभाए। लीड रोल भी किए। चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का

ब्राह्मणता फिर ऋषिकेश मुखर्जी फिर एस पी ईरानी फिर बी मित्रा और फिर आई एस जौहर वो भी डायरेक्ट करते और फिर जिनके नाम गिनवाओ बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं। वैसे तो मैंने बचपन से लेकर अभी तक

मजदूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्चा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छाव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूप लेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आए, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकर्षित किया। श्यामा के उस दौर के

स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मानता है तो उसे मिलती है धरती। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांध कर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है।

0: तालुक खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, गुनाह होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया,
2: मगर गाना न आया, बजाना न आया, दिलवर को अपना

को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है उसी का। ये बदमाश ने वही क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसकी तरफ पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ही दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी।

0: दिमाग का तोता है।
1: बेटी, लाख समझालो पर मन को तो करनी है अपनी ही।
0: अब देखिए ना, आप आता है किसी के पीछे पीछे ही दूर,
1: और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी रखी जाए।
0: अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए।
1: जाने कौन सा सूट काट रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है।

दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला ले, वहाँ समझो इंसान का बनता घर है। उस पर जब नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उसके पीछे, लेकिन वो

काम लेकर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें न की है, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहाँ भी हो रही है वही सिकड़न? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है